0: गुड न्यूज एफएम 105.1
1: विश्वास सुनैबाट आउँछ गुड न्यूज एफएम रेडियो 105.1 मेगाहर्ज।

0: गुड न्यूज एफएम 105.1।
1: अब तपाईँ सुन्न सक्नुहुनेछ कार्यक्रम सफल यात्रा प्रस्तुता तेज रोकाको साथमा।

0: ग्रेस इलेक्ट्रो वर्ल्ड कलंकी खड़का गांव एलआरआई स्कूल को नजिक
1: घरियासी सामान एउटे छातामुनी पाइन्छ ह्याक्कै पारेर
2: पुग्ने छौ हामी विश्वासी अन्धार